गुर अंग लिखी से कुमारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जबे आ हर तुम बड अगम अथाह।

और गंदगी जीवन हर करवा से बाबा साल साते रहे इस राय दुलार दर्शना वास्ते व्याकुल एक साल नहीं दो साल नहीं 12 साल हो गए राय दुलार उनके उसे बुढ़ेपे दिया चुटियां पै गई लख कुमार वापस प्यारी साहब सिंह राय दुलार राय तुम्हें कमेटी का मालिक मुसलमान हो गया है पर धन गुरु नानक के प्यार से राज रोंदा है दीवाना हो ना रात्रि नींद है ना दिने कहन है दो मेरे दादिया मैं कभी बाबू रूटड़ा हा कोई पता नहीं किसी ने बहुत ही छल आवे से रोड के ले जावे कोई सोने पर चल रहा और कुछ नहीं चाहूंगा प्यार वाले की बाबा इसके जी महाराज वचन कर देते डॉक्टर को जाइए मैं सारी एनक आदि एनक एक ऐनक जी होती है वो पढ़न की होती एक ऐनक दूर वेखा भी होती है कई शौकीनी की भी ऐनक लवा लेंगे नाथ श्री वाले एक दिन सारा जलंधर तू लुधियाने जा रहा है गड्डी ठीक नहीं सी बस एक सफर कर रहा है गर्मी के दिन भी सर सर्दी और खास गर्मी में एक यंग मैन नौजवान लड़का मेरी सीट ने नाम देखा हुआ देखे बड़ा सुंदर नौजवान है मैं पूछा काका तेरी सेहत तो बड़ी चंगी है पर तेरी अखा खराब हो गई हर साल मैं चलाई सकता है अब से कह लगा भाई जी अखा खराब नहीं हुई मैं क्या तेरे ऐसे क्यों लाई है कह लगा न्यू लाइफ ही है नया आंखों श्री वह ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਪਰ ਨਿਊ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗੁਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਕ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧੰਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਪਾਓ ਤੇ ਅਖਾਂ

खैर कह जाएगी। दर्शन की अजराय उदास रोता है, मेरे धनुराज का जाएगी एक मेरी दर्शन। तलंडी में सारे रहने वाले बड़े हैरान, राय बदार की हो, हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक टूटता फिरता है, राय बदार चलाओगे राय बदार की हो, हर मेरे गुरु नानक की गुरु नानक टूटता फिरता है, राय बदार चलाओगे राय बदार छोड़ता है। कहना प्यारे हो गुरु नानक का प्यार जो मैं मिलिया हो नहीं, यह तो अंत का प्यार है, अदम का प्यार है, पता नहीं कि जन्मों का प्यार है। तो राय गुलाब रोज उन्होंने कह देना कि

निकलता हूँ। जितने भी जगह लोग की कहते हैं कोई कहता है कि ट्रेन में माया का प्यार है, कोई किसी को मां वड्याई का भुखा कहता है, पर राजकुमार कहता है दादे मैं लोग की कहते हैं तो राजकुमार कहता है

एकदम मेहता का नहीं दिया बड़े सत्कार आलू सुना कोई मेरे धन गुरु नानक दिखो कल आवेगा मेरा भाई एडे वे छोड़े देंगे कालू तू अरदास कर मेरी अरदास नहीं सुनता मेरा भाई क्योंकि मैं पापी किसे सुनी नहीं पुकार किसे गुरमुख नहीं अरदास कालू मेरा जलवा फिर मेरा जीवन सब कालू दिया भी तो बारे कराए भी ये भी है मैं अरदास कर नानक आवेगा नहीं जी मैं अरदास की थी तो आंदा नानक भी वापस चला जाएगा आपको श्री वाले क्योंकि मैं वो माया का कीड़ा हूं जिसने 20 रुपया बदले गुरु नानक के थोड़े मुकड़े से चंदेड़ा पाए 12 साल के विछोड़े में एक रोते पुत्र में विछोड़े थे अज मैं बेकारों को भी निर्भर कर पश्चाताप हर जाम हर जिना नाल मैं लाल के सोने मुखड़े पे चपेरा पड़े अज्ञान कर एक दिन कह पिता नाल जी पिता जी वेख रहे के कम नहीं चलेगा कोई काम करो जो आगे लै 20 रुपये लै जा कोई सौदा कर कोई बिजनेस कर मैं तेरे नाम का भाई बाले को तोड़े बाले आ नाने कभी अनजान है तू ख्याल रख अब तभी आ रहे की बगैर लिया भी तब बच्ची पर रुक होने चाहिए चले गए गंगे भी कटे सर वादा चुट बैठा अरे कह लगे बाले जी मार आ रहे आप इतना बहुत पुरुषों के दर्शन करेंगे रब दे प्यारे के दर्शन कीतिया रब चित आंदा आवे सारे चित तेरे भगता मन की कटिए बैल साल संगे बाले ने क्या मारा आप जेड़े कम आए हो करिए सानू की लोड़ है क्योंकि बाले को पता भी अभी सारा रबों का प्यार करना कितने इसी का समाधि लगा के बैठा है अरे कह लगे पाले महापुरुषा के दर्शन भागा हर चंगा महाराज आए इन्हों का जरा मत सी बड़ी वधेरी उम्र का चिट्टा अजुत वर्गा था एडा वा लिटा का उसे जुड़ा किया हो सबा ने आके आदेश दिता एने खुद सत्कार मार दिखाया दुनिया दाता देने वाला दुनिया का राजक मेरा धन गुरु नानक अब उन्हें प्यार नाल पूछा मारा ही सुनाओ भोजन छके अब कुछ इस तरह मां प्यार जाके पुत्र नु कहती है जो पुत्र प्रशादा छक ले जे तां छक लिया तो मां पहले रख जाती है जे नहीं छके तो सच्चा पिता आज कुछ के मंत्र ने किया मारा कितने दिनों का पूछ ले हो एक दिन का दो दिन का तीन दिन का इन्हें क्या 5 दिन हो गए हम प्रशाल जी सब का प्याला पी के बैठे हर उस कह रहे बाले जी महाराज पिताजी ने की किया सी पिता ने किया कि खड़ा सौदा करेगा सच्चा सौदा करेगा नाम होए अजूर कहने लगे बालिया इस तो वाला सच्चा सौदा हो कोई नाम वाला कोई सौदा नहीं की करिए 20 रुपया का सीधा ले आके भूखे साधुआ भोजन बालिया महापुरुष ने मुंह जिसने भी अन जाएगा रब खुश हो जाएगा गुरु नानक आके सुन भाई बाला ये सौदा है लाभवंद
अब करिए सबका तेरी करके। भाई बाजे ने बड़ा समझाया महाराज पिता के गुस्से में जान दो कि नहीं। बाजे पिता ने ही किया खड़ा सौदा लाओ द्वारा ये सब हो गया चूड़ काने जाके सीधा के अंदर प्रसाद तैयार किया महापुरुषों ने छकाया तेरे सारे ने छकिया प्रसाद सुखे में रोटी मिल जाए शांति आए सारे प्रसन्न है तो जरा महापुरुषों का मन सी और अंदर तैयार होके कटिया तो जो मना उमरा छोटी है काम बड़ा वड्डा चीज है किसी प्यार लाई किसी को प्रशादा शिकार ना अपने पता नहीं ये कौन है किसी ने महापुरुष ने उसने अंतर ध्यान होके वेख्या हैरान हो गई ये तो आप प्रतीत हो गए आप अकाल पुरुष है निर्गुण को सगुण रूप धार के इसे सानू दर्शन देने वास्ते आया है उठ्या रह नहीं सकिया मेरे धर्म मार दे गए इन्हें लंबी जमा ने किया गुरु जी ये की कर निका दिया बाल का उन्हें के मथे पर देखने हो पंत ने कहा नहीं जेरा थानू निका दिया बाल का दिता है ये सारे तो वा सारे तो आज मेरी बढ़िया।

सारे महापुरुषों ने साधा ने धन गुरु नानक अगे नमस्कार की सारे ने कहा धन गुरु नानक अगे साधवा ने प्रसाद छका के हजू वापस मुड़े तलवंडी के नेड़े आए कह लगे बाले नु बाले असी तो इतने बहवे तू घर चला जा। बाले ने कहा बड़ा समझाया कि नहीं समझे गलती कर बैठे हैं हूं इतने रुक के बहना चाहते सतमुच बाला अपने घर आ गए कालू उड़ीकता पिया नानक सच्चा सौदा करने वास्ते गया होया आया नहीं किसी ने क्यों नहीं था जी भाई बाला आ गए। अच्छा फिर नानक क्यों नहीं आया। मैं क्या कालू भाई बाले के घर चला बाले है? जी बैठा है नानक किथे भाई बाला बोले मैं तेरे फिर पूछे नहीं बोले तीजी वेली हरी जी गया उथे वणा दिया चंगिया में लुक के बैठा क्यों क्यों लुकिया है बनाए दसो भी रुपये थानू दिते सन कितने क बना के लिया भी पच्ची बाले ने किया मैं ताजी रुपये की बना के लियाने सानू तो मूड़ी गुल हो गई है आखो श्री बने मूड़ी और किस तरह सारी विख्या कर कालू के अंदर गुस्से की ज्वाला बल तेरा लाल हो गया किथे है नानक अज मैं नानक नु जीवदा नहीं छा मेरा घर उजाड़ जा रहा है नेता कालू क्रोध पिंडाल माता त्रिपन पता लग रहा अज बड़ा गुस्सा आया हो रहा है पता नहीं मेरे लाल लाल की करे बुलाया नहीं नानकी जी अम्मी जा तू जाके पिता को समझा दे कोई भी 20 रुपये ही है बेबे तो रुपये मां ने सोचा नौजवान जी नु घरों पर भेज दिता है पिछे नौकर नु भेज दिता नहीं रह सकी मां आप भी मगर मगर तुर कालू कौन चुके अगे हजूर समाधि लगा के बैठे पता नहीं कहे प्रोग्राम पर सोचते जगत जगते ठंड पाने वास्ते पता नहीं दादा कहे विचार जाते कालू ने हजूर की मां पकड़ के खड़ा कर लिया गुस्से लाल अखा करके गया कितने हर मेरे वीर पी कल विचार सुन दुनिया का दाता हजूर ने एक मेरी अखा खोल के पिता वाल तकिया फिर नजर दी कर गुस्सा चंडाल ने इस चंडाल गुस्से ने किया तेरी सास संगत मैं ते कालू का खब्बा हथ फेरा ते मेरे धन गुरु नानक की सच्ची सच्ची गल दे उत्ते चपेट में सोहना मुखड़ा गुलाब वाला मुखड़ा इतना सोहना मुखड़ा चपेड़ वजी गुलाब दिया पंखड़िया कुमलान लग गई नीर पै गए बेबे पहुंच गई बेबे ने सोचा चंगे मौके से पहुंच गई आज मेरे पिताजी ने वीर वास्ते कुछ नहीं किया पर जो तेरे अगे होके तकिया की तकिया नरंकारी वीर ने सोहने मुखड़े से नीर पै गए उपा मार के रो कह लगी पिताजी मेरे वीर नाम है रबी वीर नाम है बेबे की कही है

बदर पा मैं जेहे कर वैरी इठे कर कर सिठा बेमुखा आपो बुरे जान कै सिठे लिख न सकन चित्रगुप्त सत समुंद समावन चिठे चिट्ठी हूं तुम्हार लिख लख लख एक दो एक दुतठे कर कर संग हो रहे होए मस्करा सवा सब ठिठे मैथों बुरा न

हूँ बेमुख मंदा, चोर यार जो आ रहो पर घर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा, विश्वास घाती आकृत घन

फिर गुरु शरण साध संग लो न आवई। जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुरु सेवा ना लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में ना ठहरावई।

रैन सैन समय सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानिए। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग उल्लू अंध कंध प्रचीन उन्मानिए। सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकवानिए। तैसे मिल साध सं सकल संसार तर्यो मोहे अपराध।

मारी। दृष्ट दर्श ही शब्द श्रुत ही बुद्ध बल ही सूदे हस्त न पावरी। प्रीतहीन रीतहीन पाए पै प्रतीतहीन चित्तहीन वित्तहीन सहज स्वभावरी। अंग अंगहीन दीना तीन परची ना लग चरण शरण कैसे

अनाथ नमो सर तो सोना दानी न मोसो भिखारी मोसो न दीन दयाल न तो सर मोसो अज्ञान न तोसो बिचारी मोसो न पतित न पावन तो सर मोसो बिकारी न तोसो उपकारी मोरे हैं अवगुण।

0: जगाए पार। बोलू चख चकी चख थल वरु ले बहुत अनंत, लाडू मां दाणिया का पखी पौंदिया लेना सा, सुए चाड़ को आइए जंत नानक पौंदिया करता है ते,
1: नन मन पाए सुए पैके तुझे सब कोए, नच नच से चले सरोट न जाई सुधना होए।

जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्या। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वेता सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी गरीब बनवाज दातार जीओ सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहीं दे स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी अर्थवंत आनंद रूप निर्मल विनाशी गुण गावे बेअंग अंत इक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर बियो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण तो तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरे आन ना अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लात मन सब सुख पाए जे रसन चाखियो ते जान त्रिपतियां कहाए जे ढाकर सो पर सन्न पियो सत संगत ते प्यारा हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उदार सत्य सभा दीवान सत सच्चे पैं धरियो सच्चे तख्त निवास सचित पावस करियो सत श्री जियो संसार आप अभुल नाम भुल्लो रतन नाम आपार कीम ना पवै अमलो जय कृपाल हो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते फिर बौड़ जून ना आए ते बौड़ फिर जून ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तित करिया सिद्ध साधक ते तीस को तिरकी मना परिया ब्रह्माद सनकाद से गुण अंत ना पाए अगोग्यो मी जाए पूर सर्व यो समाए जे गाडी सिलग दियार प्रभ से जान लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसियो ते इत उत सदा मुक्ते प्रभ दातो दातार परियो जातित इत सरना मिले दां संतरीन जेला के भौज तरना विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर बाबा दियो दर्श मन जाओ भगत इो मन ठहरा बलियो चिराग अंधियार में बलियो चिराग अंधियार में सब काली उतरी एक नाम धर्म परगत सगल यार पवन में जन नानक गुर पार रामा जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ दनिया सत संतो समाचन अभरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सोबा इहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बनिया नानक नाम नरिंजन जानियो इनी भगत प्रेम लिमलाई
تادی انگت انگ سنگ پیو سائر تین سبد سرت کی نیور کھائی گوری امر داس کی اکچھ کتھایا ایک جی کچھ کہینا جائی سوٹی سیٹ سکل تارن کو

दिन सुरैन मन माही बसतै, तू कर कृपा प्रभु अपनी, बल बल जाओ श्याम सुंदर को।

0: बाले बाले जाओ श्याम सुंदर को अकाथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोए करो कृपा ठाकुर अपनी मूलालन से प्रीत बनी रहा तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच
1: यू आर लिसनिंग टू सीकनेट रेडियो broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.